किसी को सुरंग मार्ग को उद्घाटन को आज तैयारी कर सुरंग मार्ग का गाड़ी चलाने

व्यावसायिक खेती करने का महिला किसान दिन पेशा है निरंतर का दिन आत्मविश्वास और आपको खासो बाकी साझा का वर्ष होगा

0: किसानी स्वामी के प्राप्त सफल उद्यमी सफल कृषि उद्यमी बनना के लिए कृषि उद्यमी महिला तीन महिला भाई संग साथ ही सूचना स्पष्ट भी प्रकटी बन
1: Thank you.

0: कार्यक्रम संध्या 6:15 बजे हमारा संदेश स्वागत का शुक्रिया बिंदु संग्रामी हमारा संदेश साथी एफ एम राजापुर पदय एफ एम खरिया बाकी रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोबरपुर रेडियो हाथेमानो चाँडी गांव पालिका माध्यम से कसम प्रसारण पीटीदार हमारा संदेश अधिकारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसुरी नगर पालिका में 18% बाल बालिकाओं पर शिक्षा घोषित बढ़िया तालचा रामनगर महावीर पुषाचल सहित मंत्री भक्तराव जमुनी प्रदेश योजना आयोग का सदस्य महासंदीप खड़का पुरुष सांसद भूकान स्वर्गीय सचिव देना निर्णय सर्वोच्च स्वीकार पूरा समाचार केन्द्र से
1: बांसुरी नगर पालिका में 11% बाल बालिका प्रसिद्ध कुपोषित पीड़ितों चारों महिला उत्थान केन्द्र का आयोजना महिला निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 3333 जना बाल बालिका का स्वास्थ्य जांच कर 11% बाल बालिका शीघ्र कुपोषित नगर प्लस 1% बाल बालिका कला कुपोषित खाना अश्विन समस्या न्यूनीकरण करना उद्देश्य बांसुरी नगर पालिका साथ एवटा कला में अश्विन जीवन कला पोषण कार्यक्रम अंतर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम गांव समाज का नेतृत्व प्रतिरोध वड़ा नंबर 7 भीतर बरघर स्वर्णीय गुड़िया तथा समाजसेवी जीवन कला पोषण कार्यक्रम अंतर्गत अभिमुखीकरण कर कार्यक्रम में सभाध्यक्ष आसन सेवती बांसुरी नगर पालिका वड़ा नंबर 7 का वड़ाध्यक्ष बलिना चौधरी।

0: चिंतन नाराजगी आपको कसूर आता है देखो सा संतानुसार भारता पर तनी कर एक से ब्रेड क्या से लेता है देखो सा पहले जति कल्याण क्या करते थे मुझे सही माता ने और ये पनी आपको तो भाई के बोलते हैं अतिन पर्णी अवस्था में रहे कुसुम कार्तिक से दिमाग से उनके भगवान को आपसे प्रबुद्धा पड़ी गैस ऊर्जा तकनीक की अन्य को समस्या सहज समाधान हुए गैस विक्रेता आसन का बेस्ट उत्पादक से विष्णु प्रसाद तुम्हारे सीआईएमसी में बताने को
1: कोई नहीं होता है

सुना तीन दिवसों से पापा दिखाई को जो जैसे बांग्लादेश का अरबाबी और रंगारा फकीर और हसन ने पार्टी ने लीग इंपीरियल को पिस्टो ससना खिलाड़ी पोखरा एवं जश्मा

ये तो मेरा बात है, तो सुन जाइए, वास्तव में ध्यान से जो चिंता नहीं हुई, नहीं

0: ప్రకటన టికెట్ అనే తారులు అధిస్తున్నారని శాంతి సంజంతా ఉల్లసం ప్రజల రపం కటోతి కొరకు ఆరోప ప్రకటన యుబిబిసి నేపాలి సేవాహు.
1: सर्वप्रथम आपको स्वागत सुशनी में गए थे दुई समुदाय बीच में तनाव पच्चीस गृह मंत्रालय तैं का प्रमुख जिला अधिकारी सहित सुरक्षा निकाय का प्रमुख काठमांडू बोला प्रजीय वासुदेव घिमिरे को स्थापना संघ सभा का प्रजीय ईश्वरी प्रसाद बनाने खटाइए प्रधानमंत्री की प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपता बताए हुआ प्रदेश प्रधान कार्यालय में कार्यरत डीआईजी श्रीखर खाना कोशी प्रदेश प्रधान कार्यालय में